सिख लोक सुनावे कंत न पुछे वातुड़ी सुहाग दणावे चूहा खड ना मावई लग छज वलावे मंत न होए अठुहिया हथ सप्पी पावे सरसन ने आगास नो फिर मथे आवे तुही सराई जरदरू बेमुख पछतावे।

रतन मणि गल बांध रहे क्यों कीम न जाने, रतन मणि गल बांध रहे क्यों कीम न जाने, करछी साओ न संभले भोजन रस खाने, डड्डू चिकड़ वास है कमले ना सियाने, नाप कथूरी मिर्ग दे फिरदा हैराने, गुजर गोड़स वेच के खलसूड़ी आने।

सुके जावा सावन वन हरियावले सुके जावा सबको सरसा वर्ष दे झूरे जोला सब नारा तुम मिलावना सबना रात मिलावड़ा चकवी दो रहा संख सम

दोस्ती नित सहसा जिए। नदी किनारे रुखड़ा विसाहो न किए, मृतक नाल विहाई ऐ सुहाग न थिए। विस हला हल बीज कै क्यों अम्यो लिए, बेमुख सेती पिरहड़ी

छाए छुट्टड़ होई मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई पीड़ लई रस गन्ने छिलछू है न कोई।

कुत्ते हलत मन सुगावे, ठंडा तत्ता कोयला काला करके हाथ जलावे, ज्यों चक चुंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे, जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे, वंश कपूत कुलछना छड़ियां बने न विच समावे।

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको होत। पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको होत। पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास ध्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

कुत्ता राज बहालिए, फिर चक्की चट्टे। कुत्ता राज बहालिए, फिर चक्की चट्टे। सप्पे दूध प्यालिए, व्यो मुखों सुटे। सप्पे दूध प्यालिए, विहो मुखों सटे। पत्थर पानी रखिए, मन हठ न घटे। चोआ चंदन पर हरे, खरखे पलटे। त्यों निंदक पर निंदो, हठ मूल न हटे। अपन हथी अपनी, जड़ आप उपटे।

चखई दुर्गंध सुखावे, काओ कपूर न चखई दुर्गंध सुखावे, हाथी नीर न वालिए सिर छार उड़ावे, तुम्हें अमृत सिंजिए कुड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे, निंदक नाम भी होने सत्संग ना पावे, मूर्ख सच न जाननी, निंदक

कर दे परवासा, थल विच तपन पठिया क्यों लहे प्यासा, सोने राज कमाईए कर भोग बिलासा, छाया बिरख न रहे थिर पुजे क्यों आसा।

0: रत्नवा बारू भीत बनाई रचपत रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उज्जो कहां गवा
1: अजनु समझ रच बिगड़ो ना हनी अजहू